0: वोडाफोन मेकअप नैनसा सीनंद काबोंग निकाले को दिखाने बोंग करके कनो आने के दे फाइव अप यों ते जने बुंदारा के जने में बुंदारा दे रिचार्ज दे फोर अप यों दे वबुंदारा दे थ्री अप यों दे दे बुंदारा के दे में दे वंदारा दे रिचार्ज और दे टू अप यों दे वोवा के दे तेन वंदारा नो कंटो नो वंदारा ऑन नेट मनी यू कैन दे वंदारा और दे तेन वंदारा एंड अ बेन दैना दे वन अप दे बोंग दे नो वन रिचार्ज इन अ बेन दैना वोवा दे बोंग दे दे बुंदारा और दे बी में दे वन ऑन रिचार्ज इन अ बेन दैना यू कैन दे लोवा दे बोंग Awai tu wabun tara, ibu kini suwa tu bong. Awai kerja nari, ada tu wabun tara, atau ni wabun tara tu recharge. Ada nak kena ni benda tayna, ina nanti tu pina tu bong. Iri boroi, ada yang nak kira kira koyai. Nanti kari nak kem, nanti mereka penansa.
1: Kurapa.
2: Holy pass. Orang kait tu boroi, yon te holy pass.
1: Kerja kiam dada, ayak esana. Awak kerja tu pina bong ana. Cinta mana tara, bonga. Ina nanti tuan tu bong. Orang kait star, tuan tu bong. Ibu kini kari nampu boroi yai. Iri suwa akhirnya kena kira kira koyai. One home.